वाव कणक को गोल सब पिंजवाल पिंजवाल परे लंबे जागो भाई अंदर सोना किने लाम